0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। चांदनी रातें, चांदनी रातें।
0: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

सुरेंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो रहे हैं, यानी कि 4 घंटे बैठेंगे एक साथ, करेंगे दिल खोल के बात, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। और वक्त बिताने का ये सिलसिला तो हम शुरू करेंगे ही करेंगे, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए यहाँ पे।

0: 3311063 पर हमें मैसेज कीजिए, गुड मॉर्निंग कोड्स भेजिए, मैसेजेस भेजिए, मोटिवेट कीजिए, साथ ही साथ बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसी चल रही है जिंदगी आज, क्या क्या करने का इरादा है, क्योंकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। उसके साथ साथ याद दिलाएंगे हम आपको कि बाबूमोशाय मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट, बिंदास होनी चाहिए, और मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए बातें तो हम करेंगे, आपको खबरें भी सुनाएंगे, मगर गाने भी बहुत प्यारे वाले लेकर आए हैं।
1: शहर कुड़े निखरी तू शिखर दोपहर कुड़े, बॉम्बे तू बॉम्बे तेरा शहर कुड़े,
0: और थोड़ी देर में आपके रेडियो सेट में आने वाला है
1: तेरी मेरी मेरी तेरी चोंच लड़ियां।
0: अब भैया ऐसे कैसे
1: होना था प्यार हुआ मेरे यार।
0: आज काफी रोमांटिक्स वाले मूड में हैं हम, तो प्यार भरे गाने सब लगाएंगे, तो भाई तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट लगा लीजिए इस जर्नी के लिए। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, जियो बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, जियो विंडोज।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: मनमर्जियां मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 6:18 हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, तो चलिए एक एक करके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। मोहम्मद असलम भाई का एक मैसेज आया है और उन्होंने गुड मॉर्निंग भेजा है मुझे। एक बहुत ही प्यारा सा फोटो भेजा है, एक सनराइज बैकड्रॉप में है, उसके साथ साथ फूलों का एक गुलदस्ता। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। संधु जी का मैसेज आया अभी के अभी, गुड मॉर्निंग, आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक एंड प्रोडक्टिव डे। हरपाल संधु फ्रॉम जिक्री दुकान करके उन्होंने मैसेज भेजा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। सतीश कुमार जी का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, उन्होंने जो है गुड मॉर्निंग भेजा है और अपने क्या कहते हैं फिटनेस ऐप का जो है एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, काफी मोटिवेटिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है, ये मैसेज आया जुल्फी भाई से, जहां पे लिखा है सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड वर्थवाइल पर्सनल गोल्स। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच जी, और आपको भी काफी बढ़िया दिन हम विश करते हैं। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है जहां लिखा है गॉड यूसेस ब्रोकन थिंग्स ब्यूटिफुली, broken clouds pour rain, broken soil sets as fields, broken crops yield seeds and broken seeds give life to new plants. So when you feel you're broken, be rest assured that God is planning to utilize you for something great. Wow, wow, beautiful perspective. क्योंकि देखिए जब हमें लगता है कि यार अब नहीं हो पा रहा, अब हो चुका है, हम टूट चुके हैं, तभी कुछ नया आपकी लाइफ में आपसे होते हुए आएगा। तो जस्ट बने रहिए वहीं पे। और नाजनी जी का मैसेज आया है, नाजनी जी ने मैसेज भेजा है हमें, गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ ब्राइट ब्यूटीफुल डे अहेड, मे एवरी आवर ब्रिंग यू रीजंस टू स्माइल एंड मे यू अकम्प्लिश एग्जैक्टली व्हाट यू सेट आउट टू डू, हैव अ फैंटास्टिक डे करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया और बिंदास दिन हम यहाँ पे विश करते हैं, और इसी खुशी में चलिए सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर। कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 6:31 हो रहे हैं और यहां पे जो है शुरू करने का वक्त आ चुका है ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज।
0: और ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में आज का सवाल काफी बहुत बढ़िया सवाल है यार, मतलब हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट एक सवाल है, उसके साथ साथ मुझे लगता है साइंटिफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह है कि हु इज द फर्स्ट वुमन टू विन नोबेल प्राइज ट्वाइस। ऐसी कौन सी महिला है जिनको दो बार नोबेल प्राइज मिला है, आपको बताना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इनके बारे में हमने पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है, तो इसका जवाब तो आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और यही बात बताते हुए, सवाल पूछते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और याद दिलाते हैं कि 3311063 पर आपको मैसेज करना है। आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो नोट भेज सकते हैं, तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा गाना आपकी तरफ जो है हम भेज रहे हैं, गोरी तेरे प्यार में मूवी का गाना है ये, कमल खान और नीति मोहन की आवाज में, बहुत ही प्यारा गाना है। इस गाने को एंजॉय करते हैं एक साथ बैठकर और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। 6:47 हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने सवाल पूछा था एक, ये ऐसी कौन सी महिला है, सबसे पहले महिला कौन सी है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। और यहाँ पे हमारे पास जो है मैसेजेस आए हैं। संधू जी ने मैसेज किया है, लिखा है आंसर इज मैरी क्यूरी करके, उन्होंने मिडिल नेम भी लिखा है, बट भाई वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था प्रोनाउंस करने के लिए इसलिए मैंने छोड़ दिया। बट थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और मुझे प्रशांत जी ने भी मैसेज किया है, उन्होंने बोला है कि गुड मॉर्निंग सुदेव, इट इज मैरी क्यूरी, आई थिंक 1 for physics and 1 for chemistry। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और संदूर जी ने भी सही जवाब दिया है, मैरी क्यूरी जी हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था 2 different फील्ड्स में, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। और ये एक फीट है जो अभी तक किसी और, मतलब पहली महिला थी जिन्होंने अचीव किया था। और काफ़ी क्या कहते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, मुझे लगता है कि इनके बारे में ज़रूर सबको रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और यही बात बताते हुए हम क्या करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले तालियां बजाएंगे भाई। बहुत बढ़िया, इसी खुशी में एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर में। मैं वापस आऊंगा मूवी का गाना है, काफी थॉट प्रोवोकिंग इसका जो है वीडियो था। आपने अगर मूवी देखी है तो आप इस गाने के वीडियो को याद करोगे, आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पैक्ट इस गाने ने जनरेट किया था।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है,
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर
2: ये गाना।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:08 हो रहे हैं।

हैं और यहाँ पे भाई चलिए मौसम का हाल देख लेते हैं। अभी का जो टेम्परेचर है वो है 33 डिग्री सेल्सियस और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट बताया जा रहा है 32 डिग्री सेल्सियस और हवा बह रही है 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और मेरे दिल में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी? ना मुन्ना ना, ये हवा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। मगर ह्यूमिडिटी जो है गाइस शुरू हो चुकी है। कल रात को यार बाहर निकला था मैं, क्या ही बताऊं मैं, और उसके साथ साथ थोड़ा हेजी सनशाइन भी बताया गया है। ठीक है, थोड़ा आप ऐसे जाओगे तो थोड़ा हेजी हेजी लगेगा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। मगर रात को जो बाहर निकला था, रात को नहीं शाम को बाहर निकला था और मैं देख रहा था कि इतना ह्यूमिड हो चुका है बाहर, खड़े खड़े लिटर लिटर लिटर ऐसे ऐसे पसीने बह रहे थे। तो फिर मैं अंदर चला गया, एसी ऑन किया, बट इस गर्मी में उस एसी का क्या ही फायदा हुआ, बेचारा एसी जान झोंक दी भाई उसने, अपनी जान झोंक दी। वो बहुत कोशिश किया, फिर मैंने 21 में डाला, 20 में डाला, तब जाके थोड़ा ऐसे हुआ। बढ़िया, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है धीरे धीरे। अपना ख्याल रखिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मगर उसके पहले एक दरख्वास्त है, वो ये है कि चित्र भेज दीजिए हमें थोड़े खींच के फोटोज भेज दीजिए अपने आसपास के नज़ारों के 3311-1063 पर। यहाँ पे सुनते हैं कॉकटेल 2 का गाना। Stay tuned. यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. Experience more with Ooredoo.
2: Hello to all the listeners of Radio Olive.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:17 हो रहे हैं और यहां पे जो है मेरे पास थोड़े फोटोज आए हैं। मुझे अनिल जी ने एक फोटो भेजा है, उसके साथ साथ मुझे एक फोटो आया है रहीम भाई का, और उसके साथ साथ एक और फोटो मुझे भेजा है जुल्फिकर भाई ने। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने वक्त निकाल के फोटोज जो है क्लिक किए भेजे। मुझे पता है यार, जाने की जल्दी रहती है और ये सब रहता है, फिर भी छोटा सा वक्त आपने निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बड़ा एक जश्न था आपके साइड से, थैंक यू सो मच। और ये रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा गाना हम प्ले करना चाहेंगे जबरदस्त हिट्स में।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन।
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई अभी जो है यहां पे चलिए फिटनेस की बात करते हैं। फिट है तो हिट है में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से सुनिएगा।
1: फिट है तो हिट है,
0: भाई बहुत बड़ा एक मिथ रहता है कि मेटाबॉलिज्म जो है यंग अडल्टहुड के बाद जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है और फिर उतना इफेक्टिव नहीं रहता। क्या सही में ऐसा है? आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है एज के हिसाब से धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है, मगर फैक्ट क्या है? फैक्ट ये कहता है कि मेटाबॉलिज्म कोई फिक्स नंबर नहीं है जो एज के बाद परमानेंटली सेम रहे। रिसर्च दिखाती है कि मेटाबॉलिज्म पूरी जिंदगी बदलता रहता है और इस पर मसल मास, फिजिकल एक्टिविटी, हार्मोन्स और एजिंग का इफेक्ट जरूर पड़ता है। बहुत लोग मानते हैं कि 25-30 साल के बाद मेटाबॉलिज्म अचानक स्लो हो जाता है। रियलिटी में कई केसेस में वेट गेन का रीजन मेटाबॉलिज्म नहीं बल्कि रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी है, मसल मास का ग्रेजुअल लॉस है, लाइफस्टाइल चेंजेस, पुअर स्लीप और स्ट्रेस है, और मसल टिश्यू रेस्ट पर भी कैलोरीज बर्न करती है। इसलिए एज के साथ अगर मसल मास कम होता है और एक्टिविटी लेवल गिरता है तो डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो सकता है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि हेल्थी हैबिट्स मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकती हैं। रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक, गुड स्लीप, एक्टिव लाइफस्टाइल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एजिंग के साथ कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस नेचुरली आते हैं लेकिन वो ओवरनाइट नहीं होते और उनका इम्पैक्ट लाइफस्टाइल से काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मोटी मोटी बात ये है, मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डायनामिक सिस्टम है। एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है लेकिन मसल मास, मूवमेंट और डेली हैबिट्स उस पर उतना ही बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ring for the newly married, cute little bangle for the newborn? Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
1: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन call 4411133.

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन.
3: इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन.
2: FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
4: इन एसोसिएशन विद.
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
5: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
6: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.
7: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
8: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर.
9: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Nasim Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide it into two groups. First, the group fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
8: Doctor on air. Brought to you by Nasim Healthcare.
10: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:16 हो रहे हैं और यहां पे चलिए बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो भाई सबसे पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा हमें कि वापस आ चुके हैं कौन? रोनाल्डो। पहले मैच के एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद जो है पोर्चुगल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कल के मैच में उन्होंने दिखाया। उज़्बेकिस्तान के साथ के मैच में 5-0 से उन्होंने मैच को जीता, जिसमें 2 गोल जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लगाए। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टीम में थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट भी दिखा। अब देखिए, मैंने कई बार बोला कि 2022 की जो टीम थी और 2026 की जो अर्जेंटीनियन टीम है, इन दोनों टीम में कॉमन है, सब मेसी के लिए खेलते हैं। ठीक है, मेसी के उसके लिए खेलते हैं। वो एक टीम स्पिरिट, वो एक कमराडरी, वो एक विगर जो है पिछले मैच में पोर्चुगल में नहीं दिखाता। इस बार चेंज ज़रूर आया है, मगर कभी कभी जब हम गेम देखते तो हमें लगता है ये रोनाल्डो थोड़ा से ऐसे आउट सा हो जाता है कि हो क्या रहा है करके। थोड़ा कभी कभी वो ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं या फिर ऐसे प्लेस करते हैं कि हमें लगता है यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये इजीली मूव फॉरवर्ड करके हमें भी डाउट आता है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ गया कि हाँ भाई ये सेल्फिश प्लेयर है, बस अपना देखता है, कि वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं। उनका जो नेचुरल एक फ्लेयर है, नेचुरल जो एक टैलेंट है, वो बाहर आ ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है। उसके बावजूद भी उन्होंने कल जो है 2 गोल लगाए, अच्छा लगा हमें भी देख के। तो सारे मेसी फैंस आज रोनाल्डो फैंस से बोल रहे हैं कि आज तो बहुत कुछ हो गया ना। तो और उसके साथ साथ मैच हुआ था इंग्लैंड और घाना के बीच में, जो ड्रॉ रहा, 0-0 रहा है। और आज के मैचेस की अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले पनामा और क्रोएशिया का मैच हुआ, जिसको क्रोएशिया ने 1-0 से जीत लिया। कोलंबिया और डीआर कॉन्गो की बात अगर हम देख करें तो अभी स्कोर जो है मतलब फुल टाइम हो चुका है, तो 1-0 से कोलंबिया ने जो है मैच को जीत लिया है। आज के बाकी जो मैचेस हैं उनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
1: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:28 होने वाले हैं और चलिए बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with...
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
3: Your trusted remittance partner.
0: और भाई यहाँ पे आज के जो बाकी मैचेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। ग्रुप बी में होने वाला है स्विट्जरलैंड और कनाडा के बीच में मैच रात को 10 बजे। उसके साथ साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना वर्सेस कतर, जो होने वाला है रात के 10 बजे। ये भी ग्रुप बी का मैच है और हम सब जो है इस मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। इवन जो कतरी फैंस हैं जो मैच देखने के लिए गए हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। और जैसे इस टूर्नामेंट में कतरी फैंस ने जो है अपने ट्रेडिशनल अटायर के साथ स्टेडियम में जाके अपने टीम के लिए चीयर किया है, वैसे ही होगा। एंड यही एक कल्चरल मैसेज जो है पूरे वर्ल्ड के सामने जो है कतर रखना चाहती है कि जितना हम आगे बढ़ते रहते हैं उतना हमें अपने ट्रेडिशंस को और अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही बात बताते हुए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्ले करते हैं जिगरिया मूवी का गाना विक्रांत भारतीय और ऐश्वर्या की आवाज में। स्टे ट्यून्ड या रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
3: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
7: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है एक बहुत ही बढ़िया खबर जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से। गूगल ने गूगल वॉलेट और गूगल क्रोम ऑटोफिल के बीच डीपर इंटीग्रेशन जो है इंट्रोड्यूस की है, जिससे ऑनलाइन फॉर्म्स भरना और भी आसान हो जाएगा। क्या क्या नई चीजें आई हैं उनके बारे में जरा हम ध्यान देते हैं। क्रोम ऑटोफिल अब कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी सेव और फिल कर सकता है, जैसे कि फ्लाइट डिटेल्स, व्हीकल लाइसेंस प्लेट या फिर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब गूगल वॉलेट के साथ इसके इंटीग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल क्रोम जो है डायरेक्टली गूगल वॉलेट से डेटा ऑटोफिल कर सकता है, जैसे कि ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, नोन ट्रैवलर नंबर, ये सब। इसके सिक्योरिटी फीचर्स में अगर हम गौर फरमाएं तो डेटा सिर्फ यूजर की परमिशन से ही सेव या फिर ऑटोफिल होगा। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एनक्रिप्टेड रहेगी। यूजर्स गूगल वॉलेट सेटिंग्स में जाकर अपनी सेव्ड इन्फॉर्मेशन मैनेज या अपडेट कर सकते हैं। और क्रोम 150 एंड्रॉइड में नया ऑटोफिल एंड पासवर्ड सेक्शन में ये अपडेट जो है आएगा, जहां पे आप पासवर्ड एंड पास कीज, पेमेंट कार्ड्स एंड लॉयल्टी कार्ड्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, ये सब दे सकते हैं। और यही बात बताते हुए जरा हम भी आगे बढ़ते हैं और अगला गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Radio

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
0: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने मनोज बाजपेयी साहब का एक वीडियो देखा था, एक शॉर्ट्स मैंने देखा था, जहां पे वो बता रहे थे कि भाई जब दिन बुरा चलता है, जब वो तुम्हारा महीना बुरा चलता है, तो वो इतना बुरा चलता है ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। वो बताते हैं कि उन्हें एक बार अच्छा खासा काम मिल रहा था, एक सीरियल में वो एक्टर थे, लीड एक्टर थे, उसके साथ साथ एक कॉर्पोरेट मूवी में भी उनको रोल मिला था, उसके साथ साथ एक और छोटे से मूवी में भी जो है उनको रोल मिला था। तो ये सारी चीज़ें पैरेलली चल रही थी, मगर इन तीनों में से एक ही दिन वन इन वन सिंगल डे उन्हें जो है निकाल दिया, एक के बाद एक करके फेलियर्स पे फेलियर्स आते गए। मगर वहाँ पे उन्होंने यार दिल नहीं हारा अपना, हार नहीं मानी, वो लगे रहे। और उनकी स्टोरी जो है एक टेस्टमेंट है कि भाई अगर हम गिव अप नहीं करेंगे, अपने सपनों के पीछे लगे रहेंगे, तो वन डे दे विल कम ट्रू। उसके साथ साथ मैं थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम जो सपना देखते हैं हमारे लिए वो हमारे लिए हो, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो है एक जोश टॉक एक एपिसोड में देखा था, जहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया इंसान ने एक चीज़ बोली थी। उन्होंने बोला था कि यू डोंट चूज ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशंस चूज यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे घर कर गई, मेरे दिल में बस गई। और कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि समटाइम्स वी एस्पायर फॉर समथिंग, बट इट डजेंट मीन दैट कि हम उसके लिए फिट हो या फिर परफेक्ट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हमारा स्किल सेट या फिर जो हमारे अंदर का एक वो होता है, टैलेंट होता है, किसी और चीज़ के लिए होता है। वो आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही बात बताते हुए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Short Break.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Akshay Kumar.
6: Hi, this is Anushka Sharma.
7: And I'm Ashwin Vasi.
8: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। भाई यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खबर जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। करामा ने गवर्नमेंट सर्विसेज रीडिजाइन चैलेंज 2026 में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। इस अचीवमेंट का रीजन क्या है मैं बताता हूँ। करामा ने गवर्नमेंट सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो है प्रेजेंट किए। इन सॉल्यूशंस में सर्विस चैलेंजेस का डिटेल्ड एनालिसिस और प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट प्लान भी शामिल था। फ्यूचर फोकस स्ट्रैटेजीज और इंप्लीमेंटेशन प्लान्स ने उनकी एंट्री को काफी स्टैंड आउट किया। उसके साथ साथ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्यादा एफिशिएंट बनाना और यूजर फ्रेंडली बनाना, कस्टमर एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना, इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करना। ये अवार्ड करामा के इनोवेशन और सर्विस एक्सेलेंस के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। स्टाफ डेवलपमेंट, नॉलेज शेयरिंग, मॉडर्न सर्विस डिलीवरी मॉडल्स पर भी फोकस दिया गया है। और ये बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं, मगर गानों के उस पार जब आएंगे तो एक इंसान के माइलस्टोन्स के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बिना आज का दिन अधूरा रहेगा। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ओलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजा आएगा ना भिड़ो।

0: स्वास्थ्य।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के माइलस्टोन्स के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि उनके माइलस्टोन्स के बिना, डिस्कस किए बिना उनके बारे में ये दिन अधूरा रह जाएगा। तो कल के काफी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस के बाद ही मेड हिस्ट्री, बिकॉज ही इज द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 6 डिफरेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026। 6 वर्ल्ड कप्स उन्होंने खेले हैं, ये उनका छठा वर्ल्ड कप है। हर वर्ल्ड कप में उन्होंने स्कोर किया है, एंड ही इज द फर्स्ट मेल प्लेयर टू डू दैट। ठीक है, और इन्होंने इन टोटल 10 गोल जो है स्कोर किए हैं। 2006 में एक गोल स्कोर किया है, 2010 में एक गोल स्कोर किया है, 2014 में एक गोल स्कोर किया है, 2018 में हमने देखा काफ़ी क्लासिक परफॉर्मेंस था जिसमें हैट्रिक भी हमने देखा था, 4 गोल उन्होंने स्कोर किए थे, 2022 में उन्होंने एक गोल स्कोर किया है, और 2026 में अभी तक 2 गोल्स वो स्कोर कर चुके हैं। अगर पोर्चुगल का कैंपेन और ज़्यादा आगे रहेगा तो और भी गोल्स देखने को हमें मिलेंगे। अब थोड़े नोटेबल स्ट्रीक्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि 2026 में ये गोल स्कोर करने के बाद वो जो हैं ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 6 एडिशंस में गोल स्कोर किया है। मेसी के साथ जब कंपैरिजन अगर हम करें तो मेसी ने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, मगर उन्होंने 2010 के एडिशन में कोई भी गोल स्कोर नहीं किया था। और अगर हम एज के हिसाब से बात करें तो 41 ईयर्स एंड 138 डेज ओल्ड रोनाल्डो ने अपने करियर का एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड भी अचीव किया है। वो ये है कि ही बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू रिकॉर्ड अ मल्टी गोल गेम इन अ मेंस वर्ल्ड कप। उसके साथ साथ ये सेकेंड ओल्डेस्ट प्लेयर हैं टू एवर स्कोर इन अ कॉम्पिटिशन, और इनके आगे एक ही प्लेयर हैं, उनका नाम है कैमरून के रॉजर मिलिया, जो 42 ईयर्स के थे जब उन्होंने स्कोर किया था। और इसमें से अगर ये जो 10 गोल हैं इनमें जो हम देख रहे हैं, 3 गोल स्पेन के खिलाफ आए हैं, घाना के खिलाफ 2 गोल आए हैं, उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल आए हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया और मोरक्को के खिलाफ 1-1 गोल आया है। तो यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर ये एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है धीरे धीरे टाटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है और हम जरा निकलते हैं, मगर जाते जाते यही याद दिलाएंगे कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। थोड़ी देर में कशिश यहाँ पे आ जाएगी, खुली बाहों से कशिश का स्वागत कीजिएगा। जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार कशिश को भी दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे चलते चलते कल सुबह 6 बजे इसी सीट पर, हम आएंगे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए। तब तक के लिए एंजॉय करिए इस दिन को, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पेंड कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे?
1: आएंगे नहीं, आ गए।
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक।
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडो ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: This hour is brought to you by
5: Homestar Us. We complete your home.

क्या देखो, शाहरुख खान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि यस बॉस जैसी मूवी में जो वो काम कर रहे हैं एक दिन इतनी आइकॉनिक बन जाएगी. मतलब तब ये मूवी जो है उतना ज़्यादा प्यार जो है इस मूवी को नहीं मिल पाया था, लेकिन अब ये मूवी एक एग्जाम्पल बन चुकी है. एंड अगर मैं बात करूँ मेरे पापा को, तो ये मेरे पापा को जो है ये मूवी सच में बहुत पसंद है. इस मूवी से ऐसे बहुत सारी इंस्पिरेशन है जो उन्होंने लिए हैं. सो बस सबको इंस्पायर कर रही है ये मूवी. वेलकम जी, गुड मॉर्निंग. 106.3 रेडियो हॉल पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड अगर हम बात करें मूवी यस बॉस की, तो मेरे पापा ने तो इस मूवी से बहुत कुछ जो है एक्सेप्ट किया ही है कि बॉस को जो है हमेशा यस कहना चाहिए, हमेशा काम को प्रायोरिटी देना चाहिए. लेकिन मैंने भी इस मूवी का एक गाना था चांद तारे तोड़ लाऊं, उस गाने से मैं आज भी इंस्पायर होती हूँ. एंड जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ में करियर में क्या कर रहे हो, क्या सपना है, अब इसके ऊपर क्या करना है, तो मैं वो गाना सुनती हूँ एंड मेरे जो सपने हैं वो डबल हो जाते हैं एंड उनको पूरा करने की जो ताकत है वो भी डबल हो जाती है. आपको लगेगा कि यार ये क्या तुम बातें कर रही हो, ये इमेजिनेशन में होता है, ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं, एक बार ट्राई करके देखो, सब होता है. फिलहाल देखिए मैं आ गई हूँ अपना शो लाइफ मस्त लेकर, तो लाइफ को और ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाएंगे आपकी मिलकर. लेकिन उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा 3311063 पर. तो जल्दी से जाइए, व्हाट्सएप खोलिए, उस पर मुझे मैसेज डालिए 3311063 पर और बताइए कि आज के दिन का क्या प्लान है, अभी तक दिन कैसा जा रहा है. थोड़ी सी देर में आकर मौसम का जो मामला है वो आपसे डिस्कस करूंगी. फिलहाल वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग कोक स्टूडियो भारत का ए अजनबी गाना आदित्य रिखारी की आवाज़ में आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदा.

0: trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो भाई वक्त बताने का वक्त हो गया है. स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:12 यानी 10:12.
2: हाय रेडियो वाले, 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान.
3: आई एम नंबर 1 रेडियो
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: ब्यूटी समझते हैं, अरे सुंदरता सुंदरता वही है ये गाना. मतलब अगर कोई डेफिनेशन देनी हो ब्यूटी की तो मैं ये गाना प्ले कर सकती हूँ, बिकॉज इतना अंडररेटेड और इतना ब्यूटीफुल ट्रैक है ये. सुविधागा मूवी से अभी रिसेंटली मैंने रीवॉच की है एंड अमेजिंग मूवी है. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड सुविधागा की अगर हम बात करें तो रिसेंटली मैंने उसे रीवॉच किया है एंड वरुण धवन मुझे जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में पसंद आए थे ना, बिल्कुल वैसे ही वापस पसंद आने लग गए थे सुविधागा देखने के बाद. मतलब लिटरली एक वॉर्म्थ थी उस मूवी में. आई डोंट नो व्हाई वो चली नहीं या उतना ज़्यादा उसे प्यार नहीं मिला, लेकिन ये गाना पपॉन की आवाज़ में अमेजिंग है. वैसे बात कर लेते हैं मौसम की. मौसम की बात करें तो इस वक्त जो है करंट टेम्परेचर हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस. आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. लेकिन ह्यूमिडिटी तो देखो ऐसी हो रही है जैसे मतलब आपने जो है कोई गरम गरम चावल बना के वो जो मतलब क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ यार मैं आप लोगों को. ओके सो आप इमेजिन कीजिए ह्यूमिडिटी बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे अगर आपने गरम गरम चावल बनाए हो एंड आप उसका ढक्कन ऐसे खोल के देखिए ना, आपने चश्मा पहना हो एंड वो जो भाप आपके मुंह पे लगती है ना, आपके चश्मे पे जो है एक भाप सी जम जाती है, बस वही हाल जो है जैसे ही आप मतलब बिल्डिंग से बाहर पैर रखेंगे सेम टू सेम आपको फीलिंग आएगी. कल तो यार गाड़ी चलाने में भी काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी बिकॉज ह्यूमिडिटी की वजह से ना थोड़ा सा ब्लर हो गया था सब कुछ. मुझे ये फीलिंग एक्सप्लेन करनी नहीं आती है बट आप भी यही रहते हो तो आप तो समझ ही रहोगे. सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कूलनेस की ज़रूरत है इस माहौल को, इस मौसम को, बस इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपकी नज़र कर रही हूँ मैं.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
0: सो ह्यूमिडिटी के चलते कुछ और दिखे या ना दिखे, नजर आए या ना आए, तेरा चेहरा जब नजर आए ये जरूर आप सुन सकते हैं. अदनान सामी की आवाज में तेरा चेहरा गाना, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास. लौट के आइए फिर मेरे ओ चीजें की बात करेंगे जरा.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

गाने में देखिए ये लोग भले ही जागे जागे कह रहे हैं लेकिन अभी भी मेरी आंखों में सोए सोए से ख्वाब जिंदा है। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, बोलने में अच्छा लग रहा था इसलिए बोल दिया। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूं आपकी कसूस एंड शो आपके लिए जो है लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं। एंड मुझे एक बात जो है बहुत दिन से आपको बोलनी है कि लोगों में ना आजकल ह्यूमैनिटी कम होती जा रही है एंड मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी स्वैग जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने जो है आज पूरे 2 घंटे लगाए हैं सिर्फ ये डिसाइड करने में कि मुझे क्या पहनना है। उसके बाद भी इतना बेसिक आउटफिट पहन कर आई हूँ ना मैं और बिल्कुल मौसम अप्रोप्रिएट है ही नहीं मेरा आउटफिट। एक तो हेड टू टू जो है मैं ब्लैक पहन कर आई हूँ और उसके बाद मैंने एक मोटी वाली जैकेट पहनी है। अभी जब तक मैं एसी में बैठी हूँ तब तक तो बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन जैसे ही मैं बाहर पैर रखूंगी किसी स्टीम्ड मोमो जैसी मेरी हालत होने वाली है। सो आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो आप प्रेफर करते हैं कि इस मौसम में पहने तो ताकि मैं आपसे इंस्पायर हो जाऊं। बाकी फैशन की बातें बॉलीवुड की बातें हम तो जारी रखेंगे ही। एक बहुत ही अमेजिंग क्यूट वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर हाउसफुल मूवी से 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप हमसे बातचीत जो है वो जारी रख सकते हैं। अपने आप में पूरी कॉन्वर्सेशन है ये गाना, इंजॉय करो वापस आओ और कहते

0: अरिजीत सिंह की आवाज में मेरी क्रिसमस मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया. मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑल पर. शो लाइफ मस्त है आपके लिए लेकर आ गई हूँ. एंड रोज की तरह स्ट्रेस से लड़ने का एक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ. सो मैंने ना ये कोई सेगमेंट नहीं है, लेकिन बस आप लोगों को जो है इतना स्ट्रेस है कि आप लोग मुझसे इस सेगमेंट पे इंटरेक्ट करने लग गए, इसलिए मैंने सोचा कि यार रोज एक तरीका बताऊंगी कि स्ट्रेस से फनी तरीके से किस तरीके से डील किया जा सकता है. यार देखो जीवन में ना इतने छोटे छोटे स्ट्रेस हैं कि अगर उनके बारे में आप ज्यादा सोचोगे तो और ज्यादा स्ट्रेस होगा, फिर ये स्ट्रेस जो है ये बहुत मेजर हो जाएगा. सो माइनर स्ट्रेस से जो है डील करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अपने स्ट्रेस को जो है एक ऑल्टरनेट नाम दे दो. और ये ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपने स्ट्रेस को एक ऑल्टरनेट नाम दे देते हो, सपोज मैंने जो है अपने स्ट्रेस को कालिया नाम दे रखा है कि कालिया जो है उससे हमें लड़ना है. सो जब आप एक कंपटीशन में अपने दिमाग को डाल देते हो कि यार ये जो हमारा स्ट्रेस है इसका नाम कालिया है और हमें इससे लड़ना है, तो आप जो है उससे हराने की कोशिश में लग जाते हो. एंड देखो हारना तो अपन ने सीखा ही नहीं है. सो बस फिर हराने के चक्कर में आप स्ट्रेस को हरा देते हो या फिर फनी कॉन्वर्जेशन जो है वो कालिया के साथ करते हो एंड आप एक आउटकम पे पहुंच जाते हो. ये जो चीज़ है ये मैंने अपने एक OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले दोस्त के साथ जो है ट्राई करी है. उसकी OCD को हमने नाम दे दिया था कालिया, जहां पर हम जब भी उसे कुछ ऐसा करने का मन करता था जो उससे OCD करवा रही होती थी, हम उसे ये कहते थे कि यार ये इतना देर से कालिया करवा रहा है. एंड इसके बाद उसकी OCD में बहुत इंप्रूवमेंट आया. जैसे OCD वाले लोग क्या करते हैं कि बार बार हाथ धोने की उन्हें आदत हो जाती है एंड वो एक लूप में फंस जाते हैं कि वो हाथ धो रहे हैं तो वो हाथ धो ही रहे हैं. सो हमने कालिया नाम दे दिया उसकी OCD को एंड हमने ये कहा कि ये जो कालिया है ये तुमसे हाथ धुलवा रहा है बार बार. सो एक बार हाथ धोने के बाद कालिया को बोल देना अब आप चुप रहें. सो बस उसने ये करना शुरू किया एंड सच में आप पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन कालिया ने जो है हार मान ली एंड अब उसका OCD जो है वो काफी बेहतर है. सो आप अपने स्ट्रेस को क्या नाम देंगे, क्या फनी नाम दिया जा सकता है स्ट्रेस को, ये बताइए मुझे 3311063 पर. वैसे अगर किसी बॉलीवुड के विलन का नाम देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. तो बताइए आप जो है कौन कौन से नाम जो है अपने स्ट्रेस को दे सकते हैं 3311063 पर. फिलहाल एक फ्रेश गाना सुनने का जो है वक्त आ गया. ऑल ए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर.
1: Radio Olive Park.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.
0: पति पत्नी और वो दोसे. ये ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर. एंजॉय कीजिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

अर्जुन कपूर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस. मतलब उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अपने डेब्यू मूवी में ही दे दी थी, और ऐसा बहुत कम होता है. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड ये गाना इशक ज़ादे मूवी से था, आपने इन्जॉय किया. एंड बहुत सारी बातें जो है वो करनी ऐसा लगता है मुझे बची हुई है आपसे, लेकिन वक्त की बहुत कमी होती है. लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली मैं बात कर लूँ. सो ताज़ा तरीन खबर ये है कि पद्मश्री अवार्ड जो है वो रोहित शर्मा जी को द्रौपदी मुर्मू जो इंडिया की प्रेसिडेंट हैं उनके हाथों दिया गया. एंड उसके साथ साथ आर माधवन जी को, यानी हमारे मैडी को भी इंडिया का ये प्रेस्टिजियस जो अहदा है, जो अवार्ड है, वो दिया गया पद्मश्री. एंड यार मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बहुत डिजर्विंग लोगों को बहुत देरी से अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मिल चुका है, अच्छा लग रहा है. एंड वो जो वीडियो है ना जिसमें रोहित शर्मा चलकर आ रहे हैं एंड उसके बाद उन्होंने अवार्ड लिया है, ये देख के पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों की आंखें जो है वो नम हो गई थी एंड गालों पे ना ब्लश आ गया था. ऐसा जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत कम होता है साथ में. सो बढ़िया है. लेकिन साथ में ना मैंने बहुत सारे लोगों से कुछ सवाल भी पूछे थे. सो उन सवालों का जवाब जो है वो मेरे पास आ चुका है. सो मैंने आपसे ये बोला था कि यार अपने स्ट्रेस को जो है आप एक ऑल्टरनेट नाम दे सकते हैं. सो मुझे जो है यूसुफ जी ने जो है एक नाम दिया है अपने स्ट्रेस के लिए, और वो है गब्बर सिंह. बहुत ही ऑब्वियस था, मैंने बोला था बॉलीवुड की विलन्स का नाम दे दीजिएगा, उन्होंने दे दिया. मैंने अपने स्ट्रेस का नाम कालिया जो है वो दिया है. सो किसी का मैसेज ये भी आया है कि आप ऐसे किसी को कालिया नहीं बोल सकते. अरे बॉलीवुड के एक विलन का नाम है यार ये तो. और साथ में ये मैं अपने ही स्ट्रेस को नाम दे रही हूँ, स्ट्रेस जो मुझे काफ़ी परेशान करता है, स्ट्रेस जो मेरे अंदर, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में रहता है, टेंशन बन के जो पनप रहा है उसको मैं नाम दे रही हूँ. यार उसमें क्या गलती है, अगर वो बुरा मान भी गया तो भी क्या ही हो जाएगा. वैसे आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको अपने स्ट्रेस को क्या क्या नाम देने चाहिए बॉलीवुड के, अगर मैं विलन्स के नामों पर आऊँ तो. सो 3311063 ये नंबर है, इस पर अगर आप बता सकते हैं. लेकिन आने के बाद जो है हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑलिव अपडेट्स पे जो आपको सुदेव की आवाज़ में सुनाई देगी. सो फिलहाल ये अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए. हमने वही लगाया दिल जहां लगाना नहीं था, हमेशा वही करते हैं हम जो नहीं करना होता है, बस उसी को डिपिक्ट करता हुआ ये गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, पति पत्नी और वो दो मूवी से. इसे इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कह दे रही है जियो बिंदास. नंबर याद है ना 3311063 जियो बिंदास.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: So, देखिए स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:12 यानी 11:12.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद राइट. दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुक वाकिफ अलखोर.
3: हाय, मैं हूँ सारिका. मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन. और मेगा

जैसे सुनीति जी कह रही है ना, कैश मेरी सांसों में, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरे दिल में भी, कैश मेरी बाहों में, हर जगह कैश है सिवाय मेरे वॉलेट में और सिवाय मेरे पॉकेट में। कैश जो है जहां होना चाहिए उसके सिवा हर जगह मिलेगा। देखो वेलकम बैक 106.3 रेडियो अलबर, मैं हूं आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए, कैश पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। मतलब मैं जो है घर पे बस थोड़ी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए जो बोला जाता था मैं वो कर देती थी, भले ही वो ऐसे काम हो जिनके लिए पैसे नहीं बनने मतलब मिलते नहीं है। मतलब अगर मैं किसी को पानी ला के दे देती थी या मैं अच्छे से बिहेव करती थी तो मुझे ये कहा जाता था कि तो तुमको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलेगी, चिप्स मिलेंगे या उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। सो आप ऐसे ही बच्चों को जो है काम करना सिखाते हो, लेकिन अब जो काम करने के पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। अगर आपको एडिटिंग आती है और आप अपने दोस्त के लिए एडिटिंग करके दे दो तो वो आपको पैसे थोड़ी ना देगा। बस तो जो काम आप अब चार्ज करके उसके लिए पैसे ले सकते थे, लेकिन अब वो काम आपको फ्री में करने पड़ते हैं। देख रहे हैं वक्त कैसे बदलता है, जज्बात कैसे बदलते हैं। वैसे वक्त और जज्बात जो है वो खैर इस वक्त काम करने वाले लोगों के लिए भी बदल रहे हैं। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हो रही हैं। मतलब एआई ने जो है ये कहा था, एआई की वजह से जो है हमारी नौकरी जो है वो जा सकती है या धीरे धीरे करके जो है हमारा काम जो है एआई करने लग जाएगा, लेकिन एआई को सिखाने के लिए हमें काम करना पड़ रहा है। कैसे मैं बताती हूँ। सो काफ़ी सारे इंडियंस को जो है घर के काम करने के लिए पैसे मिल रहे हैं एंड कैमरा लगा के घर के काम करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, ताकि एक वीडियो जो है वो बनाई जा सके कि किस तरीके से घर के काम किए जाते हैं एंड वो एआई को, रोबोट्स को जो है दिया जा सके, ताकि डे टू डे काम जैसे ह्यूमंस करते हैं उस तरीके के काम जो है रोबोट्स भी कर पाएं। चाहे कपड़े फोल्ड करना हो, दाल चावल बनाना हो, पेड़ों को पानी देना हो या और कुछ ऐसे काम करने हो जो इंसान बहुत बेहतर करते हैं, रोबोट्स को सिखाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए अब सर पे एक कैमरा जो है वो लगाया जाता है एंड ह्यूमंस अपना काम नॉर्मली जिस तरीके से वो करते हैं बस उसी तरीके से करते हैं, ताकि रोबोट्स को वो तरीका जो है सिखाया जा सके। अब ये चीज़ सिर्फ घरेलू कामों के साथ नहीं हो रही है, ये चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हो रही है, डिज़ाइनर्स के साथ हो रही है, जो लोग बुनते हैं, स्वेटर्स बुनते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, ताकि वो एआई को सिखा सके कि ये जो है कैसे किया जा सकता है। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एआई नहीं कर सकता, बस आज आपको मुझे वही बताने कि ऐसे कौन से काम हैं जो एआई कभी नहीं कर सकता चाहे उसे कितना ही सिखा लिया जाए। 3311063 पर आकर जल्दी से मुझे बता दीजिए। सबसे पहली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार जो है वो आप किसी भी कंप्यूटर को करना नहीं सिखा सकते, क्योंकि आज के ज़माने में हम ह्यूमंस को नहीं बता पा रहे कि प्यार किस तरीके से किया जाता है। प्यार तो आजकल इम्पॉसिबल सा हो गया। देखो बॉय, बस इसीलिए प्यार इम्पॉसिबल मूवी से ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय कीजिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: बहुत ही अमेजिंग वाला गाना श्रेया घोषाल की आवाज में आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफर. मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड कल बर्तन धोते धोते मैं ये सोच रही थी कि यार ये लोग कह रहे हैं कि एआई जो है वो हमसे हमारा काम छीन लेगा. ये वाला काम कब छीनेगा एआई? मतलब मैंने बचपन में मम्मी को जो है ये साफ साफ कह दिया था कि मम्मी मैं ना बर्तन बिल्कुल नहीं धोऊंगी, देखना आप मैं जो है इतना अच्छा काम करूंगी कि मुझे कभी बर्तन खुद धोने ही नहीं पड़ेंगे. मैं डिश वॉशर ले लूंगी और यहाँ पर मैं जो है अपना सिंक साफ कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ. बर्तन धोने में कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप रोज के बर्तन रोज धो दो तो गलत बात नहीं. अगर आप बर्तन जो है वो रख दो कि यार थोड़ी देर बाद धोएंगे और इस चक्कर में फिर आपने अपने पास जितने बर्तन हैं आपने सारे यूज़ कर लिए, फिर तो एक दिन बर्तन धोने पड़ते हैं ना, और वो फिर जो है बहुत भारी लगता है यार, एंड फिर रोना भी आता है. तो एआई कब आप बर्तन धोएंगे हमारे, बताइए प्लीज़. वैसे थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि एआई जो है उसको काम सिखाने के लिए अब ह्यूमंस को पैसे मिल रहे हैं, मतलब स्पेशली इंडियंस को, सर पे कैमरा लगा के वो सारे काम करते हैं ताकि एआई को वो जो है वीडियो दिखाकर उसके अंदर फीड करके उसे काम करना सिखाया जा सके. मैंने बस आपसे यही पूछा था कि यार ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको लगता है कि एआई नहीं कर सकता. बहुत सारे लोगों ने मुझसे अग्री किया है कि देखो प्यार तो नहीं कर सकता एआई, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, पर जिस तरीके के रिप्लाई आप एआई से बात करो और एआई देता है, मुझे लगता है कि सच में कई लोगों को अपना प्यार जो है वो एआई में दिख रहा है. ये प्यार वाली चीज भी बता हो सकती है. हाँ ठीक है, मतलब ममता नहीं दे सकता, प्यार नहीं दे सकता, एडवाइस जो है वो देता है, लेकिन कितनी इमोशनली और कितनी प्रैक्टिकली सही होती है एआई की एडवाइस, ये हम सब जानते हैं. कई बार कई लोगों की नौकरी भी चली गई क्योंकि उन्होंने एआई की जो है बात मान ली थी. एआई से जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की एडवाइस लेना जरूरी है, चाहे वो मेडिकली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो. आप एआई पर रिलाई नहीं कर सकते, एंड एक बार आपको फिर से चेक जरूर करना पड़ता है कि एआई जो बोल रहा है कहाँ, मतलब वो सच है या नहीं है. फ्रेश थॉट्स नहीं होते. अगर इंटरनेट पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो उसे सोर्स बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा. सो इसीलिए आपको एक बार फैक्ट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एआई पे आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते देखो, लेकिन मुझ पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैं जो है आपको एकदम फ्रेश वाला सॉन्ग जो है वो सुनाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड रहो 106.3 रेडियो ऑलिव पर, और ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर यानी नया नवीला जो सॉन्ग है ये एंजॉय करो.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना
0: चांद मेरा दिल का मूड ये गाना है, एंजॉय करो और स्टे ट्यून्ड रहो, कहते रहो जियो बिंदास.

मैं डर रही थी कि यार ये जो फैशन वाला जो सेगमेंट है इसको थोड़ा बड़ा कर दो, मतलब एक दो चीजें बता दिया करो, आपका फैशन वाला सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है। सो स्पेशली इम्तियाज अली जी आपके कहने पर फैशन वाला सेगमेंट जो है थोड़ा सा जल्दी हम लेकर आ गए हैं। एंड फैशन वाले सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं छातों की, यानी अम्ब्रेला की। सो कल हमने बकेट हैट पे बात करी थी एंड लोग ये कह रहे थे कि यार परकशिश बकेट हैट या कोई भी हैट पहनने से तो हमारे बाल खराब हो जाते हैं, अब क्या करें, क्या इसका कोई तरीका नहीं है फैशनेबल दिखने का कि हम हैट ना पहने और धूप से भी बच जाएं। तो देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है और वो है अम्ब्रेला का। यस, सो इस वक्त अम्ब्रेला भी जो है काफी ट्रेंड कर रहे हैं, एस्थेटिक अम्ब्रेला जिसमें लेस लगी होती है बिल्कुल नीचे, जिस तरीके से हमारे सूट्स में हमारे अनारकली पे नीचे लेस लगी होती है बिल्कुल उसी तरीके की एक लेस जो है वो इस वक्त हमारे अम्ब्रेलाज पे भी काफी चल रही है। पेस्टल कलर्स के अम्ब्रेलाज होते हैं जो धूप को जो है वो मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते एंड आपको जो है काफी कूल सी वाइब जो है वो देते हैं। सो ये इस वक्त ट्रेंडिंग चल रहा है एंड कल एक वायरल रील जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे आई थी जिसमें अम्ब्रेला ही था लेकिन उसमें काफी सारे अमेजिंग कार्टून बने हुए थे एंड वो जो छाते का ऊपर वाला पार्ट होता है ना जो अक्सर हमें चुप जाया करता था, उस पार्ट में वो उसी कार्टून का एक एक सॉफ्ट टॉय बना होता है एंड इतना अडोरेबल, इतना क्यूट। सो मैंने तो शिनचैन वाला देखा था एंड शिनचैन मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था बचपन से ही। सो ये वाला अच्छा था, आपने देखा या नहीं देखा 3311063 पर आकर मुझे बता दीजिए। बाकी और कोई फैशन हैक जानना हो या फैशन के बारे में आपको कुछ भी पता चले सो वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं इसी नंबर पर, नंबर याद नहीं हुआ 3311063। अब इम्तियाज अली जी, देखिए आपने मुझसे इतनी बार रिक्वेस्ट किया है कि फैशन वाला सेगमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। बाकी आप ही के नाम वाले एक डायरेक्टर हैं इम्तियाज अली जी, जिन्होंने एक अमेजिंग फिल्म अभी रिसेंटली जो है क्रिएट की है, मैं वापस आऊंगा, उसी का मेरा फेवरेट गाना मस्कारा आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इस गाने को एंजॉय कीजिए और आकर जरा बातचीत जो है हम जारी रखेंगे एंड कुछ बहुत ही अमेजिंग मैं AI से जुड़ा हुआ आपको बताने वाली हूँ। सो ये गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश की ज़्यादा कहते रहो जियो बिंदास। ये क्यूट सा गाना है, कोई स्टोरी लगा दो यार।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: टाइम चेक
1: brought to you by
2: नानाताल पहाड़ the ultimate कतरी adventure सुक वाकिफ अलखोर. स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 12:13.
0: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
3: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यू आर विंडस.
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: देखिए हम नवा जी, पहले जो है मम्मी को आपकी ज़रूरत पड़ा करती थी, पहले मम्मी जो है आपको काम कहा करती थी और उम्मीद किया करती थी कि आप जो है उनका काम करके उन्हें दे देंगे, लेकिन आपने किया नहीं, तो अब मम्मी जो है एआई को काम बताया करेगी। बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल बना बना के नहीं बोल रही हूँ, यही बात है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड मतलब अब वो वक्त आ गया है जब मम्मी पापा जो है हमें किसी शर्मा जी के बेटे से, शर्मा जी की बेटी से, या उनके बेटे को देखो, उनकी बेटी को देखो, ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे। अब मम्मी पापा कंपेयर करेंगे हमें एआई से कि वो देखो एआई कितने, एक बार में हमारी बात मानता है, एक बार में जवाब देता है, उसको बोलो ओके गूगल, उसको बोलो हो हे सीरी, ओ हूँ आहा आहा बोलता है और तुम कुछ नहीं बोलते हो। और बस इसी का फायदा जो है वो कंपनीज उठा रही हैं। और अब एआई जो है वो सिर्फ आपको चीजों के बारे में जवाब नहीं देगा, अब सिर्फ आपको जो है ऐसे प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आंसर नहीं देगा, अब एआई को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि वो फैसले भी ले सके। यानी अगर अब आप एआई को ये कहेंगे कि मुझे जो है 3000 तक का एक ऐसा जूता चाहिए जो ब्लैक कलर का हो, कंफर्टेबल हो, वो अपने आप ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब जो है अगर आप कहेंगे कि यार देखो मुझे जो है मेरे बिजली का बिल भरने का वक्त आ गया है, सो मेरे लिए बिल भर दो, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली बिजली का बिल भर देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी या कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने एआई को बोलो और वो कर देगा। सो अब एआई को जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि घर के बड़े बच्चों की जगह जो है रिप्लेस करने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो जो ये करते हैं वो सब कर दो, तो ये काम, तो ये जो है हमारा काम आसान हो जाएगा। आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है, क्या एआई हमारी जगह ले पाएगा? बस आज एआई पे डिस्कशन चल रहा है सारा दिन। कूल सॉन्ग ऑफ द आवर के बाद जो है हम इस पर बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल केसरिया गाना आएगा
1: रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

हाँ जी, एंजॉय कर लिया गाना, अच्छा लग गया। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ देखो मस्त है जब तक आपको पता नहीं होता है कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। जब आपको पता लगने लग जाता है तो आपको फील भी ज़्यादा होने लग जाता है। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि मोशन सिकनेस किसको कहते हैं, है ना। आपको मोशन सिकनेस के बारे में पता है, जब भी आप गाड़ी में बैठते हो और आपको जो है वॉमिटिंग सेंसेशन होता है तो उसको कहते हैं मोशन सिकनेस। जब आपको घर की बहुत याद आ रही होती है एंड आपको मन हो रहा होता है कि बस मैं घर चले जाऊँ, इतनी दूर ना रहूँ, तो उसे होम सिकनेस कहते हैं। लेकिन ऐसे ही एक सिकनेस और है जो आपको अचानक से फील होती है, उसे कहते हैं हार्ट सिकनेस। जब आपको ऐसा लगता है कि यार आपका दिल जो है वो किसी ने ऐसे खींच के बहुत ज़ोर से आपको मारा है आपके दिल की जगह पर जहाँ पे आपका दिल होता है, एंड एक सिंकिंग वाली फीलिंग आने लग जाती है, उसको कहते हैं हार्ट सिकनेस। एंड ये आप बहुत ऑफन जो है वो फील करते हो जब आपको समझ नहीं आता है कि अब आपको क्या बोलना है, आपका दिमाग बंद हो जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, एंड आपको बस ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने आपको एक पानी से भरी हुई बाल्टी में आपका फेस डाल दिया है। बस वो उसी फीलिंग को कहते हैं हार्ट सिकनेस। एंड अगर ये हार्ट सिकनेस जो है वो बढ़ जाए तो फिर ये जो है एक बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट जो है आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे डाल सकती है। सो बस मैं तो यही कहूँगी कि पानी पियो, लंबी लंबी सांसें लो और हौले हौले से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। सो ये गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: ये गाना आपने एंजॉय किया एमसी स्क्वायर की आवाज में. मैं हूँ आपकी गजल शो आपके लिए लाइव मस्त लेकर आ गई हूँ. एंड देखिए धीरे धीरे हौले हौले अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है आपको टाटा बाय बाय बोलकर. सो मैं यहाँ से चलती हूँ. मुलाकात होगी कल वीकेंड वाली वाइब्स के साथ. आप जो है स्टे ट्यून्ड रहिए. वही कहूँगी जो अक्सर कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना. ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. इस गाने को एंजॉय कीजिए. इसके बाद बैक टू बैक गाने आपके रेडियो सेट्स पर आएंगे. सो बस याद रखिए मुझे एंड 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है. इस पर आकर बातचीत जो है वो जारी रख सकते हैं. रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं. सो आइए वहाँ पर बातचीत करते हैं. फिलहाल ये गाना इंजॉय कीजिए अदनान सामी की आवाज में.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.
2: Yeah, Ghana.

टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव.
2: In association with
1: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
3: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
1: Your trusted remittance partner.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world. Olive Music Marathon, one hour, non-stop back to back gaane.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: नंबर 106.3 FM
0: रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: मॉर्निंग से नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक।
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

वेंसडे का दिन, वीकेंड एकदम नजदीक, तो खुशियां ही खुशियां है ना, और वो सब वैसे गानों में भी झलकेगा, बातों में भी झलकेगा, लेकिन पहले आपके मैसेज का इंतजार है। 3311063 पर मैसेज कीजिए, बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है, हाउ हैज द डे बिन सो फार, व्हाट्स द मूड फॉर दिस वेंसडे, कैसा ट्रीट कर रहे हैं, सब ठीक है कि नहीं, सब जानना चाहूंगी जी। कॉल भी कर सकते हैं 4441063 पर। फिलहाल भेज रहे बहुत ही बढ़िया सा गाना आपके लिए, ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

Tanisha. Amazing track only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha ke saath suna apne Olive Recharge chal raha hai yahan par. Aur gaur se suniyega. Some days I am Picasso's painting. What? Some days I am Picasso's painting and some days I am Majnu Bhai's painting. That's just life, you know. Up down होता रहता है. अगर हम एक ही चीज को लेकर बैठ जाएंगे कि यार पिकासो वाला टाइम बहुत बढ़िया था यार, ये मजनू भाई वाला टाइम ठीक नहीं है. नहीं, आप देखो ब्यूटी मजनू भाई की पेंटिंग की कि वो टी शर्ट्स पे लोगों ने चिपका के पहनना शुरू कर दिया है. आर्ट है वो, आर्ट. यस, सो वट एवर द सिचुएशन इज राइट नाउ, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना हमारा काम है, तभी हमारी लाइफ बेहतर हो पाएगी. अदरवाइज तो हम क्रिबी करते रह जाएंगे ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर दिन आ जाती है. आज एक सॉल्व करी, कल दूसरी आ जाएगी, तो क्या आप बैठे रहे लेके? नहीं. गाना सुनो आप, मैं लौट करा दी कुछ देर में. स्टे ट्यून ऑन रेडियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
1: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
3: This hour is brought to you by.
0: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक
0: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और Ministry of Education ने लॉन्च कर दिया है Summer Student Activity Centers from 5th July to 3rd August. Yes, and if you want to register your kids for that, you have to go to Maarif Public Service Portal. वहाँ जाकर आप register कर सकते हैं अपने बच्चों को. जो Student Activity Centers हैं, इनको operational time रहेगा सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 5 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक. और ये जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स हैं ये कैटर करते हैं टू स्टूडेंट्स एज बिटवीन 6 टू 18, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, कतरी स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, बेसिकली सबके लिए. एंड गर्ल्स के लिए जो सेंटर है वो है आमना बिंत वाहब सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स एंड अल खोर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स. एंड बॉयज के लिए जो सेंटर है वो है खलीफा सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज एंड अल वकरा सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज. एंड सेंटर फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इट इज अल हिदाया स्कूल फॉर स्पेशल नीड्स अल हिलाल फॉर बॉयज. ओके, सो और भी कुछ डिटेल्स जाननी है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: हमेशा।
1: अब जब मैंने ये समर कैंप की बात करी है ना, तो मुझे अपना वाला टाइम याद आ गया। लाइक एवरी समर वेकेशन आई हैड टू गो फॉर समर कैंप्स, और मैंने पक्की मेरी क्लासेस भी की। मैंने डांस लेना है एक, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग ले लेना है, और एक कोई आर्ट वाला समथिंग। सो वन ऑफ माई फ्रेंड एनरोल्ड इन मेहंदी क्लास, लाइक ड्रॉइंग एंड मेहंदी, एवरीथिंग वॉज देयर। सो आई वॉज लाइक या मैं भी ये करूँगी। डांस और इंग्लिश में तो मुझे बड़ा मजा आता था। जहाँ बात आई है आर्ट की, ड्रॉइंग, मेहंदी एंड स्टफ, मैंने 3 years कंसिस्टेंटली सीखा है। मैं आज तक एक सीधी लाइन नहीं बना पाती हूँ मेहंदी से, नाइदर कलर्स और स्केचिंग, कुछ नहीं हो ही नहीं पाता, बोन ही नहीं है। बात करने में क्रिएटिविटी है, पर ऐसे जहाँ लिखने और चलाने की बात आ गई, पेन या फिर पेंसिल या फिर स्केच, नहीं हो पाता। बट आई हैव गॉट दिस न्यू हैबिट। मैं कलरिंग बुक्स लेकर आई थी फॉर अडल्ट्स, एंड समटाइम्स जब ऐसे बहुत ज़्यादा क्योटिक हो रहा होता है ब्रेन, यू नो, बहुत सारे टैब्स खुले हुए, बहुत चीज़ें चल रही है दिमाग में, तो मैं वो लेके बैठ जाती हूँ एंड देन आई कलर। और उसमें क्योंकि बहुत छोटे छोटे से शेप्स आपको कलर करनी होती है, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, सो बाकी चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाता, एंड इट समहाउ काम्स यू एंड इट वर्क्स रियली वेल। सो अगर आप भी मेरी तरह इस चीज़ से परेशान हैं कि 50 टैब्स खुले हुए हैं सिर में, तो ये ट्राई कीजिए कलरिंग बुक्स फॉर अडल्ट्स, इट्स रियली गुड। Tried and tested है, इसलिए बता रही हूँ। Stay tuned and Jio Bindas.
2: Radio Olive पर.
3: Fresh है, ये गाना fresh है.
2: Fresh song of the hour.
3: ये

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड win.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूँ जैकी श्रॉफ रेडियो 106.3 जियो बिंदास
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
2: रेडियो ओलिव नंबर वन ओलिव लगा और हो जा रिचार्ज ओलिव रिचार्ज
0: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
2: ओलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC

तनीषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और भाई दोहा बैंक और लुलू आपके लिए जो कमाल ऑफर लेकर आया ना, इट विल मेक योर शॉपिंग मोर rewarding and amazing. जी, all you have to do is just apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card, or you can get up to 500 रियाल का Lulu Shopping Voucher. And not just that, जब भी आप Lulu Store पर spend करेंगे, आपको 5% savings मिलेंगी Lulu Points के form में, तो वो आप बाद में redeem कर सकते हैं. Also, you can enjoy airport lounge access, my book offers, dining deals और lifestyle privileges. बस कार्ड एक्टिवेट करना है लुलू पर, एक रियाल मिनिमम आपने स्पेंड करना है और रिवॉर्ड्स का मजा ले सकते हैं. दैट्स ऑल. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 30th जून ओनली. सो फटाफट से जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड एंड अपनी शॉपिंग को और भी मजेदार बनाइए. और सुन रही है रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक,
3: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha Ab ke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par.
1: Ye hai chalti phirti dictionary.
0: So dictionary ka jo aaj mera word main utha ke layi hoon, are bahut crazy word hai. So you know, koi aisa insaan jise har cheez mein fault nikalna hai. Aap कितना भी अच्छा कर लो, कुछ ना कुछ गलती वो इंसान निकाल ही देगा. इट्स जस्ट अ हैबिट कि यू नो कंप्लेन करनी है हर बात में मुझे. आई नो बहुत लोगों को अपने मैनेजर का ख्याल आ रहा होगा, बट देयर इज अ वर्ड फॉर दैट एंड द वर्ड इज स्मेल फंगस. यस, SMELLFUNGUS. स्मेल फंगस, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर पीपल जिन्हें हर चीज में गलती निकालनी है, फॉल्ट निकालनी है फॉर नो रीजन. इट्स जस्ट अ हैबिट ऑफ दिस. कुछ ना कुछ करके कुछ नुक्स तो निकाल ही लेते हैं भाई. एंड वी ऑल नो सम पीपल हु आर देयर इन आवर लाइफ हु एक्ट लाइक स्मेल फंगस. कौन आ रहा है आपके जहन में बताएं मुझे. नाम नहीं जानना है मुझे. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि यू नो आपका क्या रिश्ता है उस इंसान से. 3311106 पर बता सकते हैं और सुनते रहिए रेडियो ऑल जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Rita chal rahe hain aap. मैं अपने लेम जैम्स के सवाल पर ही हंस रही हूँ. तो सवाल आज का ये है कि आपने सपोजिटली एक मॉल खोला है, ठीक है, यू हैव ओपनड अ मॉल एंड यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड टू द मॉल. तो आप अपने उस फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए कौन सा गाना गाओगे? आपको गाना गा के इनवाइट करना है, ये कंडीशन है. तो कौन सा गाना गा के इनवाइट करोगे ये आपने मुझे बताना है. 3311063 पर मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. यू हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड टू द मॉल यू हैव ओपनड. कौन सा गाना गा के इनवाइट करोगे? फिलहाल भेज रही हूँ मैं बढ़िया वाला गाना. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे बिंदास.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं अब सो लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल था कि आपने एक मॉल खोला है और आप अपने दोस्त को मॉल में इनवाइट करना चाहते हैं तो कौन सा गाना गा के इनवाइट करेंगे. कुछ लोगों को यहाँ पे वो जवाब आ चुका है, मुझे आ गए हैं गाने और बढ़िया मजा आ रहा है मुझे सुन के. वॉइस नोट्स भेजे गए हैं सो दैट फील्स वेरी स्पेशल, थैंक यू. पर कुछ लोग अभी भी गेस कर रहे हैं तो एक और मौका देती हूँ. सोचो जरा, 3311063 पर मैसेज करो और बताओ कि आप अपने दोस्त को अपने मॉल में किस तरह से कौन सा गाना गा के इनवाइट करोगे. 4444106 पर कॉल भी कर सकते हो बाय द वे. लाइव सुना दोगे तो और ही मजा आ जाएगा ना, इसीलिए कह रही हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ओलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक,
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ है आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है अबर तो लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल था कि आपके दोस्त ने आपने अपना मॉल खोला है और आपने अपने दोस्त को इनवाइट करना है उस मॉल में एक गाना गाकर तो कौन सा गाना गाओगे और मुझे आ गए हैं काफी हद तक सही जवाब एंड यस द करेक्ट आंसर इज I know. काफी ज्यादा लेम हो गया बट मुझे मजा आया यहाँ पे जो लोगों ने मुझे गाने गागा के भेजे ना इट वॉज सो मच फन टू लिसन टू दैट थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस आप ना मेरा दिन बना देते हो सो इसीलिए आप डिजर्व करते हो एकदम मस्त वाले गाने ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
2: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
1: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक,
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: Danisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Danisha आपके साथ ऑलिव रिटॉर्ट चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान. मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे थर्सडे का दिन. सेलिब्रेट करेंगे मस्त वीकेंड की तैयारी और फुल जोश के साथ वीकेंड में एंटर करेंगे. और प्लान अगर कर लिया है ऑलरेडी कि वीकेंड में क्या करना है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो मैं बता दूंगी कल आके. स्ट्रेस किस चीज़ का है यार, सब सॉर्टेड है आपके लिए. बस आप अपना ख्याल रखिए और हमें फॉलो करते रहिए radioolive.qa पर, हमारा सोशल मीडिया हैंडल. ओके, सो दैट कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर लो, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट जीत जाओ, जैसे कि आईफोन. यस, जाओ चेकआउट करो और वीडियोस और पोस्टर्स जो भी हम पोस्ट करते हैं उन्हें चेकआउट करो, उससे इंटरेक्ट करो, हमें पता चलना चाहिए आप तक चीजें पहुंच रही है. ठीक है, और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान.
0: रेडियो

फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: ब्यूटीफुल चुल तो अब करेंगे यार, जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुकी है। मैं क्या जी सड़े हो कितना देखिए, हाल चाल सत श्री अकाल, सिमरन कौर आ चुकी है।
1: चूरा के दिल मेरा गोरिया चली,
0: आइए 4 घंटे अपने होने वाले हैं, बस आप 9 बजे तक रहिएगा मेरे साथ और तू भी आ जा।
2: I am a psycho.
0: सैया साइको बोल रहे, नाच रहा है भाई उसके सामने, मेरे को बोल दे ओ बाय गॉड, मैं छोड़ूंगी नहीं यार। अभी फिलहाल आप भी मुझे छोड़िएगा नहीं, मेरा साथ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अभी तो हम आए हैं। और आप बताओ आज का आपका पूरा दिन जो था वो कैसा रहा? बढ़िया गया? 9 में से नहीं सिमरन कौर, तेरा मैथ्स इतना ज्यादा वीक है कि तू इस तरह की हरकतें करती थी 10 में से अपने दिन को, आज आप कितने नंबर देने वाले? मूड कैसा आपका वो भी बताओ, आपकी गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के साथ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
3: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: जी मैं खिलाड़ी थू अनाड़ी से आप ये गाना सुन रहे हैं ओरिजिनल वाला क्योंकि हर गाने के इतने गाने बन गए कि अभी ओरिजिनल वाला याद ही नहीं रहता. कभी कभी गाओ तो आप जो धुन गा रहे हो या जो लिरिक्स गा रहे हो वो जो नए है ना वही गाने लग जाते हो, पुराने भूल ही जाते हो यार. बड़े अच्छे होते हैं और आप भूल जाते हैं. मुझे पता है ऐसे हजारों गाने होंगे जो कि मैं भूल चुकी होंगी, लेकिन ये गाना भी मैं भूल चुकी थी. आई लव दिस सॉन्ग और इसकी जो एनर्जी है आय हाय. देर में ये भी गाना आप सुनेंगे. देखिए कतर में रह के हमको एक चीज तो पता है कि यार हमारा टेस्ट जो है ना वो ऊद या परफ्यूम्स को लेके टोटली चेंज हो चुका. आप मतलब इतनी सारी जो है वो अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आपको मिल जाएगी कि हर बार जब भी आप किसी एग्जीबिशन में जाओ या फिर किसी मॉल में जाओ आपको अलग अलग मिलती है और आपका मन करता है कि भाई ढेर सारा परफ्यूम ढेर सारा ऊद जो है वो खरीद लो. इनफैक्ट जब हम इंडिया भी जाते हैं या जहाँ पे भी आपके जहाँ भी आप रहते हैं सो छुट्टियों में आप परफ्यूम या ऊद ये चीज़ें ज़रूर लेके जाते हैं क्योंकि ये कतर में बेस्ट मिलती है. 13th एडिशन जो है तीब अल हज़्म ऊद एंड परफ्यूम्स एग्जीबिशन जो है कल से स्टार्ट हो रहा है. 4 जुलाई तक ये चलने वाला है अल हज़्म मॉल में गैलेरिया अल हज़्म. सो यार डेफिनेटली आप जा सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री. और अगर आपको पसंद है खुशबू आपके आसपास अच्छी हो और आप जो खुशबू पहने वो भी अच्छी हो तो फिर डेफिनेटली ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत पसंद है. सबसे पहले अगर आप किसी इंसान के की शक्ल देखने से पहले या उसका कपड़े देखने से पहले कोई चीज़ अगर मैं सबसे पहले फील करती हूँ तो वो है परफ्यूम, क्योंकि परफ्यूम जो है वो आपको खींचता है सामने वाले इंसान के लिए. सो मेक श्योर कि आप अच्छा स्मेल करें. और गर्मियों के टाइम पे प्लीज़ उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी थोड़ा डिओड्रेंट थोड़ा यू नो थोड़ा सा ध्यान रखो. सिमरन कौर आपके साथ जी अविंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: presents CB 2026 Million Riyals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

स्विट्जरलैंड और कनाडा के बीच में और बोस्निया एंड हर्जेगोविना कतर के बीच में। सो या ऑफकोर्स कतर वाला मैच ही डेफिनेटली देखने वाला है, लेकिन अगर आपकी कोई भी फेवरेट टीम है चाहे स्विट्जरलैंड या कनाडा जो भी है आप उसका मैच देखिए एंड कतर को सपोर्ट जो है डेफिनेटली बनता है क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं और कतर को सपोर्ट करना हमारा बनता है। तो आप मैच कहाँ पे देखने वाले हैं, बाहर देखने वाले हैं, घर पे देखने वाले हैं, किसी दोस्त के साथ देखने वाले हैं, बता देना।

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas. क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए. सर्टिफाइड के साथ बनिए.
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद.
1: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
1: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

पहाड़ी सिंधु दी आवाज। जी मैं जी सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल 5:50 ऑलमोस्ट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं एक बारी

मौसम का अपडेट दोस्त ये कहता है 36 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 38 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 44 डिग्री सेल्सियस है एंड मिनिमम है 34 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमिडिटी जो है वो 30% है. विंड जो है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है. देखो यार बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ये जो ह्यूमिडिटी है ना ये भाई साहब अलग लेवल पे करती है. वो बैंड तो बजाती है और आपके बालों की बहुत ज़्यादा बैंड बजती है. आपको हर रोज़ जो है वो हेयर वॉश करना पड़ता है और मतलब हर रोज़ तो मतलब मैं तो वैसे हर रोज़ ही हेयर वॉश करती हूँ. बट थिंग इज़ कि आपका आधे दिन के बाद अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आपके बाल जो है ना वो एकदम चिपचिपे से हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं. सो यार वेदर बहुत ख़राब चल रहा है. आप अपने आप को थोड़ा ध्यान रखिएगा और बाहर धूप में जितना हो सके ना निकलिएगा. हर रोज़ हम सब बोलते हैं बट बोलेंगे, हमारा फ़र्ज़ है. जितनी देर गर्मी पड़ रही है उतनी देर बोलेंगे. एंड हाइड्रेट योरसेल्फ.

0: और यार आप लोगों का भी वखरा ही स्वैग है यार, इतने प्यारे प्यारे वॉइस नोट्स भेजते हो, मेरा दिल खुश हो जाता है यार।
1: हाँ जी, गुड इवनिंग,
0: वेरी गुड इवनिंग।
1: कैसी हैं आप? ठीक हैं?
0: बहुत बढ़िया।
1: आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो आज तो माशाल्लाह ऐसे सॉन्ग लगा रही हैं आप जैसे वीकेंड है। वीकेंड तो कल है,
0: है ना?
1: कल भी अभी काम करना पड़ेगा।
0: आई नो। तो
1: बहुत अच्छे से आप शो कर रही हैं।
0: थैंक यू,
1: माशाल्लाह,
0: थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो यार, वीकेंड वाली फील अपन पहले लेने लग जाते हैं ताकि कल का दिन जो है ना वो ऐसे ऐसे निकल जाए यार।

0: चीज याद रखना दोस्त।
1: बेफिक्र अभी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है।
0: बेफिक्र होना बहुत जरूरी है यार, टेंशन लेके इंसान कितने भी नहीं गया है, दिमाग अलग तो खराब होता है। सुनते रहो रेडियो ऑलिव करके, रहो जी अविंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Hi everyone, this is Benny Deol here. Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
3: Radio Olive, I'm the number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨੈਪਚੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਕਟੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇਂਗੇ ਔਰ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਅਗਰ ਆਪ ਸੀਖ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਇਸਮੇ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸੋ ਯਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਵੋ द मॉल में अगर आप जाएंगे सो टिकटॉक ब्यूटी क्रिएटर अकेडमी एट मॉल ऑफ कतर जो है वो होने वाला है 25 जून से लेके कल से स्टार्ट होगा 4th ऑफ जुलाई तक ये चलने वाला है जहां पर जो है आप मतलब एक सेटअप जो होगा एक पूरा टिकटॉक का सो आप उस सेटअप के थ्रू जो है वो लाइव भी जा सकते हैं और वहां पर इसके जाने के साथ साथ आपको जो है वो सीखने के लिए मिलेगा सेटअप के साथ साथ कि किस तरह से क्रिएटर जो है वो ब्यूटी ब्रांड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से हाउ इट वर्क और आप जो है वो किस तरीके से लाइव इसमें जा सकते हैं और पूरी चीजें जो हैं अबाउट टिकटॉक आपको समझ लगेंगी अगर आप बहुत ज्यादा टिकटॉक यूज करते हैं या फिर आप टिकटॉकर बनना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करने के लिए मॉल ऑफ कदर में मिलने वाली है। मॉल ऑफ कदर जाएंगे बाहर इतनी सारी गर्मी है शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हैं माहौल सेट है पूरा सुंदरी रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास आ रही हूं बस थोड़ी देर में
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: सर क्या पर ये बात है
3: ओ सॉन्ग

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
6: साथ. Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है, और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas
1: Olive Suno Radio Network Qatar's number one Asian Radio Network
2: Radio Olive I'm number one
3: देखो यार बाहर की हवाएं ठंडी तो नहीं है लेकिन फील लेने में क्या जाता है यार ये हवाएं आपको फील करवाएंगी कि आय हाय कतर में बड़ी ठंडी हवाएं चल रही है सो चाहे आप अपनी गाड़ी में हैं चाहे घर में आप रेडियो सुन रहे हैं या फिर जहां पे भी है हवा तो लग रही होगी तो फील ले लीजिए 3-1 एंड गो

याद है यार, वो ना ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज। छह बज के 50 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो जाए।

चल बेटा सेल्फी ले ले रे और सिमरन कौर यादव के साथ मैं जी सुनियो किदा देखी हाल चाल। देखो यार अगर आप जो है इसके बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लोग जो है वो ट्रैम में मेट्रो में जो है वो ट्रैवल करते हैं। सो लुसेल ट्रैम की अगर मैं बात करूँ, टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड करेंगे 26 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में। सो क्या है कि कुछ नेटवर्क अपग्रेड हो रहे हैं तो उसकी वजह से इसको जो है वो फॉर द टाइम बींग क्लोज किया जाएगा, है ना। सो 6 जुलाई से ये वापस से जो है नॉर्मल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो लिंक जो है वो नॉर्मल जो है वो ऑपरेशन करने वाले। सो या अभी के लिए यही इंफॉर्मेशन है। लेकिन कतर से जुड़ी हुई अगर आप बातें सुनने के साथ साथ कोई न्यूज देखना चाहते हैं, कोई फनी वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया से जुड़ जाइए यार। रेडियो ऑलिव जो है ना वो आपकी पॉकेट में होना चाहिए। किस तरीके से, देखो हमारे सोशल मीडिया को तो आप फॉलो करते करते हैं, उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है ना रेडियो ऑलिव की, चाहे आप जहां पे भी चले जाइए, जिधर मर्जी चले जाइए, कहीं पे भी ये एप्लीकेशन आपका पीछा जो है वो नहीं छोड़ेगी। आप जो है वो रेडियो 24/7 जो है वो सुन सकते हैं। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं यार, समझा करो, सुनते रहो रेडियो ऑलिव को और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: सेल्फी लेने वालों की ना एक दिक्कत होती है, जो बेचारा सेल्फी लेता है ना उसका ऐसा गोभी जैसा मुंह आ जाता है, इतना पहाड़ जैसा मुंह दिखता है यार। मुझे पता है हर बार सेल्फी मैं ही लेती हूँ, मेरे दोस्तों में से कोई भी सेल्फी नहीं लेता, लेकिन मुझे फोटो खींचने का बड़ा शौक है, मैं हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहती हूँ, जो कि करना भी चाहिए, है ना। बट मेरे दोस्त लोग है नहीं, तू खींच तू खींच तू, ये मेरा इतना मोटा मुंह आ रहा है यार। मैं किसी स्टोरियों की तरह हाल सत श्रीकाल सिमरन कौर है थोड़े ना,
1: फिर चलने वाले
0: चलते रहते हैं, जो रुक गए फिर वहां पे ग्रोथ रुक जाती है दोस्त। सिमरन कौर आपके साथ और आज है क्या बताती हूँ, आउट ऑफ पॉकेट अगर मैं आपको बोलूंगी तो आपको क्या लगता है कि हमारा आउट ऑफ बजट वाला सीन हो सकता है, लेकिन Gen Z स्लैंग है ये आउट ऑफ पॉकेट। जब कोई बंदा जो है वो एकदम अजीब सा बिहेव कर रहा है, अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के एकदम पगला गया, क्रेजी क्रेजी टाइप्स जो है वो कर रहा है बिहेवियर, सो Gen Z स्लैंग है जिसको आउट ऑफ पॉकेट जो है बोल देते हैं। अगर कोई इंसान कर रहा है ये, गर्मी इंसान को आउट ऑफ पॉकेट कर देती है यार, मतलब आप क्या बोल रहे हो क्या कर रहे हो। जब कोई बंदा ना, एक चीज का ध्यान रखो, जब कोई बंदा बाहर जाके, यू नो फॉर एग्जांपल हम सेल्स वाले ले, दिन में वो गर्मी में घूमते रहते हैं, अपनी गाड़ियां इतनी गर्म होती हैं उनकी, ठीक है, जो बाहर से अंदर आ रहा है ना उससे आधा पौना घंटा बात मत करो, क्योंकि अगर आपने आधा पौना घंटे के बीच में ही बात कर ली तो उनका दिमाग गर्मी की वजह से वैसे ही घूमा हुआ है, लड़ाई हो जाएगी। तो कलेश से बचो दोस्त, ठंडा पानी दो उसको, एक घंटे की शांति के बाद फिर बात करो। याद रखना, यू वेलकम, आई नो राइट।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: हाय गाइस, दिस इज अबार फिती खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: और फिल्म का गाना यार, हेमा सरदेसाई, उदित नारायण, आय हाय हाय ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं ज्ञान देती हूँ यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: यार बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है कि वो ना जब सामने वाला खुश होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो कि सामने वाले की खुशी में खुश होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी खुशी को देख के खुश नहीं होते हैं। सो मेरा मानना यह है कि जब आप किसी के लिए आज क्लैप कर रहे हो ना, अगर किसी की जीत हुई है या फिर कोई खुश है, उसने अपनी लाइफ में अचीव किया है, अगर आज आप उनके लिए क्लैप कर रहे हो ना, जब आप भी उस लेवल पे पहुंचोगे तो जब सामने वाले आपके लिए क्लैप करेंगे फिर आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि कितना बुरा लगता है तब जब आप किसी कैसे लेवल पे पहुंचे हो, जब आप बहुत खुश हो लेकिन सामने वाला वो आगे से कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा रहा, ना वो आपको शाबाश बोल रहा है। वो बचपन में याद है जब स्कूल में होते थे, कुछ अच्छा कर देते थे तो टीचर हमको शाबाश भी बोल देती थी और ब्रावो भी बोल देती थी और अच्छे मार्क्स दे देती थी। वो खुशी हमको तब होती थी जब तक टीचर हमको बोलती थी, अगर वो ऐसे लिख के दे देगी तो हमको खुशी नहीं होती। हम क्या करते थे, जब हमको अच्छे मार्क्स आते थे टीचर से हमको खुशी मिलती थी, उसके बाद हम अपने पेरेंट्स को जाके दिखाते थे, हमारे पेरेंट्स भी आगे से हमको बोलते थे कि वाह बेटा क्या सही किया। सो लाइफ में ना ये चीज हमेशा, ये आदत बना लो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, दोस्तों के साथ हो, अगर कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है तो उसके उसको जो है ना वो बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार तूने अच्छा किया है। लेकिन एक चीज और भी है, अगर आप अपनी लाइफ में नहीं भी अच्छा कर रहे हो तो भी लोगों को कहना सीखो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम अच्छा कर लोगे, ठीक है। ये चीजें अगर अपनी लाइफ में करोगे ना तो लाइफ में ट्रस्ट में खुशी मिलती है कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आई है बेबी।

0: सेनोरिटा तो बहुत कुछ कहती है। मेरा दिल ही डांस मारता है क्योंकि मुझे डांस करना आता ही नहीं है। ठीक है, मुंह बंद रखो, सुनते रहो रेडियो ऑलिव को और ये दे रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सीरीज का जो है वो कौन कौन फैन है यार। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ मिर्जापुर सीरीज की, एंड जब भी इसका सीरीज या सीजन आने वाला होता था, उसका ट्रेलर टीजर आता था, भाई साहब मैं अपने जीजू को बता रही हूँ, दोस्तों को बता रही हूँ, देखेंगे यार मिलके। मैं क्या जी सुनियो कहता था कि सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। कलीम भैया जो है वो अब आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखने वाले हैं, क्योंकि मिर्जापुर मूवी आने वाली है। इसका टीजर जो है वो कल आउट होने वाला है। सो उसके लिए जो है वो ऑलरेडी बता दिया गया, माहौल बना दिया गया है, जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कलीम भैया की होगी। आपका स्वागत करते हैं बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी। एग्जैक्टली कल 12 बजे जो है इसका टीजर आउट होने वाला है। कांट वेट यार कि किस तरह का टीजर होने वाला है एंड बड़े पर्दे में, क्योंकि ऑलरेडी हम मिर्जापुर में क्या क्या हुआ है वो सब देख चुके हैं, बट ये मूवी में क्या होने वाला है वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और आप बताओ कुछ इंटरेस्टिंग अगर आप देख रहे हो आजकल तो बता दो। 3311063 पर वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ, तैयार हो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार gold and diamonds, golden summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਯਾਰ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ शादी की आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे ले दूं तो आप अभी के अभी अपना नाम मुझे लिख के भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए। चलिए क्विकली मैं आप लोगों के नाम जो है वो बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। रिंकल, सफदर, कृष्णा, मोहम्मद, मुदस्सिर, मोहम्मद वसीफ, शिव, नारायण, वेरोनिका, मकसूद, अवैस, पाली, तुषार, यशवर्धन, जुनैद, मेरा नाम मत लिखिए दोस्त, आप अपना नाम लिखिए। डेन, थैंक यू सो मच। जुनैद जी, थैंक यू सो मच। रिचर्ड जी, थैंक यू सो मच। नैनदीप शर्मा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। यूसुफ जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सागर जी, थैंक यू सो मच। राणा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मकसूद जी, ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ। क्विकली 3311063 पे अपना नाम लिख के भेजिए। प्रताप जी, थैंक यू सो मच। रेनिता जी, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों के नाम ले रही हूँ ना, प्लीज़ वो अभी कुछ मत लिखिए, फिर बेचारे दूसरों के नाम रह जाएंगे। आशु जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रिहाना जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। नवतोष जी, नवजोत जी, थैंक यू सो मच। सेंसिया जी, थैंक यू सेंसिया, आई होप आपका नाम मैं सही ले रही हूँ। सजाद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। शिवांश, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रायन, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दानिश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रेनू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सूरज, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। किरण, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। मकबूल जी, थैंक यू सो मच। कुंवर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। पांडे जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिया बेटा, अब थैंक यू, अब बोल दो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो। अगले घंटे खेलेंगे दोस्त। अरे वही एक चुटकी सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव।
1: In association with
0: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
0: Your trusted remittance partner.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million reals cash prizes.
5: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 reals growth par paiye ek coupon.
4: Dusra, agar सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
5: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड कॉल 3009-1063 और 3082-1063.
1: हाय दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਈਵਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਬੀ ਅਬ ਖੇਲਤੇ ਹੈ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: एक चुटकी सॉन्ग में चुटकी बट सॉन्ग जो है मैं आपको सुनाने वाली हूँ और बताओ ये कौन सा गाना है। अरे आई लव दिस ट्रैक यार। चलो बताओ, अब बताने के लिए क्या करेंगे आप, मुझे वॉइस नोट भेजेंगे, प्लीज लिखना मत, और वॉइस नोट रिकॉर्ड करने के लिए एनर्जी सिमरन कौर जैसी यूज करना। हे सिमरन, अपना नाम बताओ, गाना चाहे तो गा के भी बता सकते हो या फिर आप लिख के तो मत बताना, बोल के बता सकते हो। अगर नहीं गाना चाह रहे कोई चक्कर नहीं, बोल के बता देना गाना कौन सा है और भेज दो 3311063 पर। एक बार फिर से चलो, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुनते रहो रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: not impossible. Agreed. मैं क्या जी सोने की तादिकी आल चल सोचिया गाल सिमरन कौरे तोड़े नाल और हम खेल रहे हैं
1: Radio Olive पर.
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया.
0: एक चुटकी सॉन्ग में ये चुटकी भर गाना. चलो आप लोगों के जवाब सुनते हैं फिर.
3: Hey Simran, it's Zara Zara from रहना है तेरे दिल में.
0: थैंक यू सो मच लव. लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी आवाज मुझे मत सुनाना यार, मुझे आप लोगों की आवाज सुननी होती है.
4: Radio
0: Olive. Hi, good evening.
4: जो सॉन्ग प्ले किया था इट इज फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में.
0: ओके जी.
5: सॉन्ग इज फ्रॉम रहना है

0: मैं प्यासी हूँ तेरी
1: खहन। लिरिक्स भूल गया अभी मेरे जैसी हो यार।
2: हेलो सिमरन, गुड इवनिंग।
1: वेरी
2: गुड यार।
1: हां जी,
2: सॉन्ग इज जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले तू आके बाहों में आजा सनम। दिया मिर्जा।
1: आए हाय हाय
3: जी सिमरन जी, ये गाना है जरा जरा महकता है दहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बांह।
1: क्या बात है यार, लड़के ये गाना गाते हो थोड़े अजीब लगते
4: हैं। गुड इवनिंग।
1: ये
4: आपने म्यूजिक सुनाया है, ये रहना है तेरे दिल में पॉपुलर सॉन्ग है। जरा जरा बहकता है आज मेरा बदन, मैं प्यासी हूँ जियो बिंदास।
1: पहले तो सबके सब प्यासे पानी पी लो यार। बधाइयां भी चाहिए थे बहुत सारे बेटा की। बिल्कुल सही बोला यार, गाना एकदम वही यार। आज तो सब जीत गए यार, आपने जीत लिया केके की आवाज में गाना। ओए होए होए, बड़ा ट्रैक यार, आई एम इन लव। सच्ची में अगर कोई प्यार में होता तो ये गाना और भी खूबसूरत हो जाता, लेकिन मैं कोई भी गाना सुनती हूँ मैं वैसे ही इमोशन में ढल जाती हूँ। जैसे कि अभी इस गाने को सुनते सुनते मैं ऐसे इमोशन में ढल जाऊंगी कि ओह हो, मैं भयंकर प्यार में हूँ। लड़का अभी चैट जीपीटी पे लोड हो रहा है। 4, 3, 2, 1, and go.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

यार ये गाना तो भूल ही गए थे, दर्दीला गाना। ओए होए होए होए होए, गाना सुन के बताना कि आप भूल गए थे इस गाने को।

जी मैं जी सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तोड़े नाल। अब सिमरन कौर की हंसी गलती माने का टाइम आ जाएगा, वही टाइम है जब मैं आपको ओके टाटा बाय बाय बोलती हूँ, लेकिन कल अकेले तो नहीं आऊंगी, कल वीकेंड को साथ में लेके आऊंगी, तो टेंशन मत लीजिए, कल जैसे तैसे दिन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आपका वीकेंड आ जाएगा। लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने, वापिस आऊंगा से गाना वो नहीं बहुत ही खूबसूरत है, उसके साथ साथ ये वाला गाना भूल गए क्या, चलो मेरी प्रीति थोड़ी प्रीत जी है इदा ही जिंदा रखना। अगले दो घंटे जेहे है मिड नाइट लाउंज न सुन वाले हो, तो कल मैं शाम को 5 बजे मिलती हूँ, मेरी पंजाबी चालू हो जाती है तो फिर मैं चुप ही नहीं करती, मैं हिंदी में बोलना है मेरे को। ओके सुखा तो मिंद्रो ऐश करते रहो, चेहरे वे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल में दुखाना, बी नाइस टू एवरी वन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

Listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. आज की किताब थोड़ी सी अनयूजुअल है, एक्चुअली बहुत अनयूजुअल है. इसका नाम है पैरानसी, ठीक है. और इस में मैं गारंटी देती हूँ कि आपने ऐसी स्टोरी पहले शायद ही कभी सुनी होगी. इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हजारों रूम्स हैं, इन्फिनिटी कॉरिडोर्स हैं, स्टैचूज हैं, बहुत बड़ा सी है, लहरें हैं, लेकिन लोग बहुत कम हैं. और धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि असली मिस्ट्री दुनिया नहीं, आपकी मेमोरी है. अब फैक्ट ये है इस पूरी किताब का कि नॉवल एक बहुत ही अच्छे राइटर ने लिखी है और रिलीज के बाद ये लिटरली वर्ल्ड में सेंसेशन बन गई थी. राइटर का नाम है सुसाना. सो बुक जो थी वो बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट हुई और रीडर्स ने इसे ड्रीम लाइक नॉवल कहा. मुझे इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि सवाल पूछती है, अगर हमारी मेमोरी चली जाए तो क्या हम वही इंसान रहेंगे? सोचिए, हमारी आइडेंटिटी किस चीज से बनती है? नाम से, काम से या यादों से? और शायद इसीलिए मेमोरीज इतनी ज्यादा प्रीशियस होती हैं. तो आज रात का सवाल भी यही है कि आपकी लाइफ की कौन सी मेमोरी है जो आप कभी भूलना नहीं चाहते. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनेमा, लेकिन फिल्म की नहीं, गानों की नहीं, हमारी एज की। क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो 18 साल की एज में कुछ और लगती हैं और 30 साल की उम्र में कुछ और। जैसे पहले भी हमने कुछ मूवीज की बात की है, बट उनमें से सबसे अच्छी है तमाशा। इतनी कंफ्यूजिंग लगती है और बाद में फिर रिलेटेबल लगने लग जाती है। डियर जिंदगी बाद में एक थेरेपी सेशन लगती है और पहले सिर्फ एक मूवी। सो फिल्म क्रिटिक्स अगर मैं बात करूँ उनकी, तो कई बार सालों बाद जब मूवी को री रिव्यू करते हैं तो वो बताते हैं, क्योंकि ऑडियंस चेंज हो जाती है, लाइफ एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाते हैं और फिर वही फिल्म नए मीनिंग देने लग जाती है। मुझे लगता है कि ग्रेट मूवीज वही होती हैं जो हमारे साथ ग्रो करती हैं, और लाइफ में भी ऐसा ही होता है, नॉट जस्ट मूवी। आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे यू नो लाइफ में नई नई चीज़ें और नए नए फेजेस लेकर आते हैं। इन 20s यू आर यंग, एनर्जेटिक। 30s में आपके जो ड्रीम है वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और 40 आते आते आपको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। सो आई वॉज थिंकिंग कि हर जगह पर जब एज में डिफरेंस आती है, चीज़ें बदल जाती हैं, तो फिर मूवीज़ में क्यों नहीं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

सो नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. कभी नोटिस किया है कि मूवी देखने के बाद लोग सर्च क्या करते हैं? बिहाइंड द सीन्स, मेकिंग ऑफ, ब्लूपर्स, हाउ इट वॉज शूट. क्वेश्चन ये है कि हमें फाइनल रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस क्यों इंटरेस्टिंग लगता है. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम नेचुरली स्टोरी के पीछे वाली स्टोरी से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि प्रोसेस हमें ह्यूमन बना देता है. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगर स्टेज पर परफेक्ट परफॉर्म करता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब पता चलता है कि उसने 100 बार प्रैक्टिस की है तो इंस्पिरेशन मिलती है यार. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज यूट्यूब पर मेकिंग ऑफ वीडियो और डॉक्यूमेंट्रीज का क्रेज ना पहले से ज़्यादा हो चुका है. लोग लिटरली जो वीडियो होता है, मेन वीडियो होता है, उसको वैसे ही पोस्ट कर देते हैं, बट मेकिंग देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब. पीपल लव प्रोसेस, नॉट जस्ट सक्सेस. और मुझे लगता है कि लाइफ में भी ऐसा ही है. अचीवमेंट इंप्रेसिव होते हैं, जर्नी रिलेटेबल होती है. तो आज आपको फाइनल रिजल्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या फिर उसके पीछे की कहानी, बताइएगा जरूर. नंबर है 3311106. मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज। आज की किताब का कॉन्सेप्ट सुनकर ही क्यूरियोसिटी जाग जाती है। बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड, यू नो किताब का नाम है। इस किताब के बारे में मैंने पहले भी एक बार बात की है, सो उसका एक और चैप्टर लेकर आई हूँ। एक छोटा सा कैफे है और उस कैफे में एक स्पेशल सी चेयर है जो आपको टाइम ट्रैवल करने के लिए देती है, लेकिन कंडीशन आपको पता ही है कि आप पास्ट में जा सकते हो लेकिन प्रेजेंट चेंज नहीं कर सकते, अब बताइए। और कॉफी ठंडी होने से पहले वापस आना पड़ेगा। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जापनीज नॉवल जो है ये दुनिया भर में बेस्ट सेलर है। मतलब जब मैं इस किताब के बारे में सोचती हूँ, काश सच में ऐसा होता तो लाइफ का जो एक चैप्टर है जिसके बारे में आप सोच के हमेशा सोचते हो यार काश ये नहीं हुआ होता, तो हम ज़रूर वो डिलीट करते, राइट? क्योंकि ये टाइम ट्रैवल के बारे में है, ह्यूमन इमोशंस के बारे में ज़्यादा है। सोचिए अगर आप पास में जा सकते और कुछ बदल सकते और फिर किसी से मिलना चाहेंगे या किस कॉन्वर्सेशन को दोबारा जीना चाहेंगे या किसी इंसान को एक बार और देखना चाहेंगे, शायद लाइफ का पर्पस जो है वो पास्ट चेंज करना नहीं होता, उसे समझना होता है। सो आई फेल्ट ये बुक ना बहुत डीप है। अगर आपको 10 मिनट के लिए पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहोगे या क्या बदलना चाहोगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, ये है मिडनाइट लाउंज। 3311106 इज माय नंबर।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद योर शो. का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो आज एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके लिए लाइब्रेरी का मतलब क्या है? किसी के लिए होता है कि रूम फुल ऑफ बुक्स या फिर रूम फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, यू नो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की कुछ लाइब्रेरीज इतनी सुंदर हैं कि लोग वहाँ बुक्स पढ़ने से पहले फ़ोटोज़ लेना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरलैंड की एक लाइब्रेरी है ट्रिनिटी कॉलेज लाइब्रेरी, जहाँ लगभग 2 लाख से ज़्यादा पुरानी किताबें रखी हुई हैं, और उसका जो लॉन्ग रूम है वो दुनिया का सबसे ब्यूटिफुल रीडिंग हॉल्स में काउंट होता है. फिर आती है लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, हिस्ट्री की मोस्ट लेजेंडरी लाइब्रेरीज में से एक. कहते हैं कि एंशंट वर्ल्ड का नॉलेज वहाँ कलेक्ट किया जाता था. और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है जर्मनी की लाइब्रेरी, जहाँ पर वाइट वॉल्स हैं, मिनिमल डिज़ाइन है, और अंदर जाओ तो लगता है कि किसी साइंस फिक्शन मूवी में आ गए हो. रिसर्चर्स कहते हैं कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबें स्टोर नहीं करती, वो आइडिया प्रिजर्व करती हैं, सिविलाइजेशन चेंज करती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करती हैं, लेकिन आइडिया सर्वाइव कर जाता है. और शायद इसीलिए लाइब्रेरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाती हैं कि नॉलेज कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, यू नो, फास्ट फैशन की तरह, फास्ट कपड़े चेंज करने की तरह. सो आप लाइब्रेरी पर्सन हो या फिर बुक स्टोर पर्सन, बाय द वे, जब भी हम किसी नई कंट्री में घूमने जाते हैं तो हम कभी लाइब्रेरीज में नहीं जाते, बट बुक स्टोर्स वो हमें अक्सर दिखते हैं और हम जरूर एक बार विजिट करना चाहते हैं. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

So let's talk about music story. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Midnight Lounge. So यहाँ पर बात करते हैं कि मुझे

लगता है कि हर क्रिएटिव इंसान को ये सुनना चाहिए, क्योंकि दुनिया के एक लेजेंडरी सॉन्ग्स पहले ना रिजेक्ट हो चुके हैं. हाँ, रिजेक्टेड. सो म्यूजिक इंडस्ट्री में काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जहां पर प्रोड्यूसर्स ने कहा था कि यार ये तो नहीं चलेगा, और फिर वही गाना मिलियंस लोगों का फेवरेट बन गया. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ म्यूजिक की स्टोरी नहीं है, ये आइडियाज़ की स्टोरी है, लाइफ की स्टोरी है. क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आइडिया में नहीं होती, टाइमिंग में होती है, ऑडियंस में होती है, या फिर परसेप्शन में होती है. रिसर्चर्स कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो नेचुरली फैमिलियर चीज़ों को प्रेफर करते हैं, इसीलिए नई चीज़ पहले स्ट्रेंज लगती है और बाद में ब्रिलियंट, और शायद इसीलिए इनोवेशन को टाइम लगता है. सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आइडिया था जो पहले रिजेक्ट हुआ और बाद में सक्सेसफुल निकल गया? आपको लगा कि यार काश मैंने ये पहले कर लिया होता. सो आज फिर भी आप किसी ऐसे आइडिया पर बिलीव करते हो जिससे लोग समझ नहीं रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यार ये हिट जाएगा लेकिन किसी और को ही समझ नहीं आ रहा है. 3311106 मैं नंबर सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, और ये है मिडनाइट लाउंज.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

So let's talk about one more interesting debate. आज सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और यह है मिडनाइट लाउंज. आज के जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है? कोडिंग, AI, टेक्नोलॉजी, हो सकता है ये सब हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्किल है जिसके बारे में हम बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है लिसनिंग. यस, सुनना. सो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि मोस्ट पीपल लिसन टू रिप्लाई, वेरी फ्यू पीपल लिसन टू अंडरस्टैंड. मतलब सुनो यार, कोई अगर आपको कुछ बता रहा है तो सुनो. मतलब आपके दोस्त, आपकी फैमिली, कोई कुछ कह रहा है तो बिना जज किए, बिना रिप्लाई देने के बस सुनो. शायद इसीलिए जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वो याद रह जाते हैं. 2026 में इन्फॉर्मेशन की कमी तो है नहीं, गूगल पे, AI पे सब कुछ है, सो यूट्यूब पे. लेकिन अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, ये नहीं है यार, ये रेयर होता जा रहा है. और मुझे लगता है कि फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल लोग वही होते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जनरली सुन सकते हैं. सो आपके हिसाब से 2026 की सबसे अंडररेटेड स्किल कौन सी है? लिसनिंग, पेशेंस, फोकस या फिर कुछ और? 3311 1063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिड नाइट लाउंज. सो आज की रात का आखिरी जो थॉट है वो कभी नोटिस किया है आपने? हम सब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछते हैं. क्या करते हो, कहाँ रहते हो, बिजी हो. ऑनेस्टली इनमें से आधे क्वेश्चन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत कभी कभी इरिटेटिंग भी लगते हैं. आप किसी नए इंसान से मिलते हो और वो पूछता है कि आजकल आप किस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, या आपने रिसेंटली क्या नया सीखा, या फिर कोई आपसे पूछता है कि कौन सी चीज़ आपको सुकून देती है. सडनली कॉन्वर्सेशन कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है, राइट? साइकोलॉजिस्ट इसे स्टडीज़ करके कहते हैं कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन जो है वो हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है. और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन यूजुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, नॉट स्मॉल टॉक, गुड क्वेश्चन, ठीक है? और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक अमेजिंग स्टोरी होती है, बस सही सवाल पूछने वाला चाहिए. तो आज रात का आखिरी सवाल क्या है? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप विश करते हैं कि लोग आपसे ज़्यादा पूछें? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. आई विल बी देयर ऑन व्हाट्सएप. अभी के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. कल मिलेंगे सेम टाइम पर. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लव।
2: ये है मिडनाइट लव।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: This hour is brought to you by
2: Homes R Us. We complete your home.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

खुदाया तेनू तकिया ते साया तेरे नालों वध सुकून आहा मैं पीरां दे जाया हवा ने पुछया बदलां नूं ए मौसम कोई नवाया मैं

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। चांदनी

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Olive 106.3 FM Geo Bindas.